Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: पाजी थोड़ा सा क्लोज, थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, अरे वाह रुको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह भाई वाह, की जोड़ी है यार, गुड।
1: ध्वनि तू कहाँ गुम हो जाती है, तू भी चलना हमारे साथ,
2: आइए आइए सर,
1: सनसेट पॉइंट तक फोटो खिंचाना।
3: नहीं मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ ऊंची ऊंची फोटो सेशन में, आज से ही जस्ट मी।

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: Avarang Teshumula Radio Karyakram Spark My Feet. Nala Biswasi Samak Basugo. नाली आइन्बा फोहर दोबा छनोट लसिगो जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला स्पार्क माय फेथ तथा जीवनला छ्यान गर्दै लसिङखरी रङ्गिर स्वागत मुला नबियोग तामाङ तिनीङा राङ्दा थेरङमा तामला चुनौती पिनबरी सेमुला जोसी राङ्ला लुइरी गेन आशिष बसेला विवा नदा विश्वास मुला दिक्की निगदी देन अन्तर्क्रियालामा ना राङ्द नाली आइन्बा फोहरा दोबरी प्रोत्साहित लाब्री सेमुला चुला अर्थात तिगा हिन्बा ना सेमुला कि रङ स्यान्दो ग्याम याङबा तरिका गरे माइबला सट्टा स्यान्दो द पिन्बा अवसर गरे सक्रिय रूपरी मैसुगो लुका छ देल 38 मि गरिद पिङ्गो ओचे परमेश्वर से नोन एनी गरिद पिन्ना परमेश्वर से मी छुइसी पिन्ना ओछे जुन दप्पा सेसे एनी गरिसे स्यान्दो गदेदा पिन्ना थेनन दप्पा सेसे एनी गदेदा याङला परमेश्वर से थेमी गदेदा मलाम पिन्सेला प्रतिज्ञा लस्युमुला जो फोहरा राङमन चम्कन क्रामुला परमेश्वर यम तिगै याङबरी याङसे गच्छ सुन्दोला जब याङ खाबरी पडव लबगदेदा रोला यालाला थेन्दे सुन सुन्दो जोसे परमेश्वर से याङला दुईरी गेन समृद्धि बाबरी हामला सोला याङसे स्यान्दो द पिनमा तामग्याम याङसे बारम्बार रकम जखेन फिर्ता याङसेला आरे परमेश्वर से याङदा स्यान्दो द सेबरी लाभा त्याग भन्दा लानन मोलम पिन्सेला प्रतिज्ञा लसुमुल याङ स्यान्दो द जति नन याङ रोग्याम फिर्ता याङला थेने थेगे एन लानन मात्ररी दोस्रो कोरन्थी नौदेला छ तर च्याङना डबा मिसे च्याङनान बाली दुइला ओछे लाना डोपा मिसे लानन बाली दुइला विवातम एनी गदिसे थानले गो याङ स्यान्दोदा दिन जति लानन याङ नच्छ बडब तबा ओछे नोन लानन नापकादे ठोङमुला जोसे लामा परमेश्वर से याङ धनी देन छोना तरिका से मोलाम पिनबरी हामस्युला यदि रङ अद्भुत फसल याङबरी सेमुला विषम निस्वार्थ दान ज्ञान लालन सुन सुबा बुद्धिमानी छनु हिन्न दोस्रो कुरन्थी नमधेल सात ओछे जम्मन मिसे रङला सेमसे मनबा अनसार पिङ्गो पिङ्गे आहान खलैल्ला कर्कापी तसी थापिङ्गो तिग्ध विषम सेमहेन सेन ताङसी पिन्बा मिरा परमेश्वर से माया लमुला परमेश्वर से गन्दा आवश्यकता तासी पिन्बा सेमु आला याङसे ताङबा तिङसे पिन्दोला रङसे चुला बढी बाध्य महसुस लस्युबासे आइन्बा तासै हाइमै दमन पिन्सुगो तिग्देवीसम रङ चु लाबरी सेम लस्युमुला थेन्दे पिन्बा बेनन भन्दा जब दुई बिबा याङ दुखी देन निराश तब दुई हिन्बा जब याङ रङला ऊर्जा शक्ति स्यान्दोला आवश्यकता केन्द्रित लला चुसे याङला लागे ज्ञान उपचार पिन्मुला याङदा दुखी शोभा तामग्याम फिर्क्या थोनबारी रु लामुला तेस्रो युहन्ना एक अधेला चार थेरङ लसी नला कोला गदे सत्तरी ब्रबमुला विवा ताम थेम्याङबा भन्दा ग्रेन ताङमा ताम नला लाग्री अर्गु तिगै आरे जब याङ हलाइला लाग्री तिगै जब लामुला देन याङसे लाभा गेला कारणसे लामा थेनी गदेला लिरी मुस्कान हामुला चुसे याङदा नङ रिगी देन साचिन जब महसुस लामुला देन थेसे याङला दुखदा आनन्द रि परिणत लाबरी रु लामुला मती छ देला तिन एन्जे चार तर एसे प्राङ्बो गदेदा पिनमा दुईरी एला दाहिने यासे तिगा लाभन मुला थे ताम एला देव्रे यासिन थागै थेदबासनमा एसे म्राङ्बा गरेदा पिन्बा से खलाइदा था आतागै थेराङ लसी विषम खलाइसे था आयाङबा ताम गदेनन् थायङमा परमेश्वर आवासी एदा इनाम पिन्न स्यान्द रोलामा साँचो तिङला इच्छासी पिन्न गदे दास लासेला इनाम पिन्सिला प्रतिका लासिमुला राङसे स्यान्दा लागि विशेष गेलामा ताम स्यान्द घोषणा थलासुगो चुदा योग्य थला थन्सुगो थेन्दी परमेश्वर जे राङदा चुला लाग्रे गेन इनाम पिन्सुला आमेन रङ्गिला जीवन रे परमेश्वर चाहिँ प्रशस्त आशिष पिन्छु गई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98-86-53-339 हस् त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गी छङ्मदानु जय मसी नमस्कार।